चले जब तू लटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: बावला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक। सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे गिरा ये गाना, फीचरिंग ज़ारा खान एंड स्केल्स। गाने का नाम है मूव बॉडी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। काउंटडाउन की शुरुआत with Move Body on Gana number 10. At RJ Kanika on Instagram par koi gana share karna, koi baatein batani ho, bindas hit me up. Stay tuned for the full countdown. This is Move Body playing right next for you only on Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
0: Number 10.

0: बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ पता नहीं। ज़ारा खान का गाना दैट वाज मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। ये गाना जब इस काउंटडाउन से बाहर भी हो जाएगा तो शायद याद नहीं रहेगा, बिकॉज इट डिड नॉट मेक मी फील एनीथिंग एंड फीलिंग इज एवरीथिंग।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: आई सेड व्हाट आई सेड, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। द शो इज अबाउट द सॉन्ग्स व्हिच मेक यू फील समथिंग। पॉप सॉन्ग्स जो आर्टिस्ट अपनी आजादी से अपनी कहानी सुनाने के लिए लिखते हैं। किसी बड़ी फिल्म निर्देशक एक्टर एक्ट्रेस के लिए गाने नहीं बनते हैं, पर हर तरह के गाने होते हैं, कुछ मासी एंड कुछ ऐसे गाने जो शायद इतने बड़े स्केल पे नहीं फटते, लेकिन जितने लोग उन्हें सुनते हैं वो कुछ फील करने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक गाने को आज हम शाउट आउट देने वाले हैं। गाने का नाम है तारे बाय फरक। इससे पहले कि मैं वो गाना चलाऊं, आई वांट यू टू थिंक समथिंग। सोचो एक परिंदा पिंजरे में इतने दिन रह रहा है कि जब दरवाजा खुला तो उड़ना ही भूल गया। जिंदगी भर जिस आसमान को देखता रहा, अब जब वो आसमान उसके सामने है उसे डर लगने लगा कि अभी आगे कैसे जाना है, पहला कदम कैसे लेना है। एंड एक्चुअली ये परिंदे की बात ही नहीं है, ये हम सब हैं। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं टू बी ऑनेस्ट एक चुल होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा छुपा बैठा है। कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर कोई कलाकार, फिल्म, पेंटिंग, कोई आइडिया जिसका बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। पर हमने क्या किया, उसको लेके सारी विशेस को एक अलमारी के अंदर डाल दिया कि चलो पहले जिंदगी बना लेते हैं फिर सोचेंगे। अब वो अलमारी बंद ही रह गई और वो सपना अंदर ही रह गया। लेकिन मान लो एक दिन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो जो सारी विशेस हैं वो पूरी हो गई, अलमारी खुल गई, सपना बाहर आ गया, जो परमिशन चाहिए थी वो मिल गई, जो पैसा चाहिए था, वक्त चाहिए था, वो आपके सामने है, आसमान दिख रहा है खुला सामने। तो फिर सोचने वाली बात है कि क्या मैं और आप एकदम उड़ जाएंगे या उस दरवाजे को देखते ही रहेंगे और डर जाएंगे, उस परिंदे की तरह जो अब इतना यूज्ड टू हो गया है अपनी सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टेंसेस से, कि आज़ादी कैसी लगती है वो भूल ही चुका है। इसका कोई सही जवाब नहीं है और आपको मुझे तो बिल्कुल नहीं बताना है, पर सोचने वाली बात है। और यही सोचते सोचते अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ये गाना बिल्कुल आपको उसी कश्मकश में लाके खड़ा करेगा। पहचान छोड़ दी जीरो से दोबारा शुरू करने वालों के लिए, आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। It's playing right next for you on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: यार ये गाना ऐसी फील्स को हिट करता है जो जेन्युइनली मैंने छुपा दी थी अपने अंदर। गाने का नाम है तारे बाय फरक, साथ में उनकी आवाज है शाश्वत बलान की। अभी सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है, अपने अंदर के उस छुपे हुए आर्टिस्ट को निकालो। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ दैट जो भी आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, व्हाटएवर यू डू, अगर आपको आपकी विश पूरी करने का एक चांस मिल जाए तो क्या करोगे, क्या है वो अंदर की चिल। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है साडी सुन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, गाने का नाम आरजू बाय नूर खान एंड मधुर एक्सो। आरजू ने डेब्यू किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: हो चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
1: गाना इंडी टॉप 10
0: कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: ऐश किंग की आवाज में, गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ की आवाज में हमने सुना बैंगल्स, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर अ गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंड आज मैं जिस आर्टिस्ट से आपको मिलवाना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, इनके गाने को सुनने के बाद आप ये सवाल पूछोगे कि यार कनिका इससे पहले क्यों नहीं रिकमेंड किया। आर्टिस्ट का नाम है खोसला रघु। इस नाम में दो आर्टिस्ट हैं, ऋषभ रघुवंशी एंड संचित खोसला। टुगेदर दे मेक खोसला रघु। इनकी स्टोरी इज टफ ऑफ ड्रीम्स। ये दो दोस्त हैं, बोर्डिंग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। एंड आपने भी अपने दोस्त से कभी तो कहा होगा कि यार साथ में कुछ शुरू करते हैं, साथ में म्यूजिक करते हैं, साथ में ये करते हैं, और कहीं ना कहीं वो रह जाता है कुछ लोगों का। पर संचित एंड ऋषभ एज आर्टिस्ट, हम सबका वो सपना जी रहे हैं एंड दे आर सो गुड एट व्हाट दे डू। कोई बहुत बड़ी बैकिंग के साथ उन्होंने शुरू नहीं किया, काफी ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग एंड देयर अबिलिटी टू कनेक्ट विद देयर ऑडियंस। गानों में आपको फुल कंटेम्प्रेरी पॉप, क्लासिकल, हैवी वोकल्स, एवरीथिंग दैट मेक्स अस फील है कि कौन से वाला गाना है, वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। इट साउंड्स वेरी न्यू एंड मॉडर्न येट रूटेड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल। आई रिमेंबर मेनी कॉन्वर्जेशंस विद बोथ ऑफ देम, एंड वो कभी भी ट्रेंड्स के पीछे भागते ही नहीं है। दे जस्ट मेक द सॉन्ग्स जो उन्हें पसंद हैं, एंड उनके कई सारे गाने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी ट्रेंड कर चुके हैं। सो येस, दे आर ट्रेंड सेटर्स। जो गाना आज हम स्पॉटलाइट करने वाले हैं, उस गाने का नाम है बेवजह। ये उस पहले वाले प्यार की बात है जो धीरे से ना आपकी पूरी दुनिया पे टेक ओवर कर लेता है। उनकी राइटिंग, म्यूजिक बहुत ऑनेस्ट है। अगर आप इंस्टाग्राम पे इन दोनों को देखेंगे तो जिस तरह से वो म्यूजिक बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत ऑनेस्ट है। आई स्वेयर, मैंने कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं देखे जो अपने फैंस के साथ ये तक शेयर करते हैं कि इस गाने को बनाने के पैसे कितने लगे, इसका हमने कितना कमाया, अगर आप ये शुरू करोगे तो ये गलती मत करना। That's how you build loyal listeners. And Khosla Raghu, Gaana Indie Top 10 की तरफ से super mad respect to you guys. अपने radio sets की volume बढ़ा लीजिए। गाने का नाम है बेवजह। Khosla Raghu की नई album का पहला गाना, it's playing right next for you only on Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.

0: खोसला रघु का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बेवजह, फीलिंग्स हैं बिल्कुल की दिल है जो मानता नहीं। एट आरजे करेगा इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना आर्टिस्ट जिन्हें आप स्पॉटलाइट देना चाहते हो मेरे साथ आके शेयर करो, वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना इज अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 5।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, गाने का नाम है डीलर। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

And the song we're going to feature this week is... गाने का नाम है तेरे मेरे साथ और आर्टिस्ट का नाम बता देती हूँ पर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज लकी अली की आवाज ऐसी है कि पहले सेकंड में हम पहचान जाते हैं कि ओ ऑफ कोर्स दिस इज लकी अली। अब मेरा काम तो गाने के बारे में बात करना, गाने सुनाने का है, लेकिन कभी कभी जब सड़कों पे निकलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनसे उनके रिएक्शंस जानने की कोशिश करती हूँ अबाउट दीज लेजेंडरी आर्टिस्ट, तब समझ में आता है दैट लकी अली जैसे आर्टिस्ट ने पॉप म्यूजिक के लिए कितना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। उन्होंने इतने बड़े हिंदी फिल्मों के लिए गाने किए हैं जैसे एक पल का जीना, अनजाना अनजानी में उनका गाना था, पर जितने लोगों से बात करो उनका नाम सुनते ही सब उन्हें एक पॉप स्टार बोलते हैं। उनके अपने पॉप सॉन्ग्स, वो खुली सड़क, वो गिटार, वो लाल गाड़ी, धूप में लकी अली गाने गा रहे हैं, और ये किसी फिल्म के गाने नहीं है, ये उनकी अपनी एल्बम के गाने हैं। दैट्स जस्ट द मैजिक दैट दिस मैन हैज। आप कभी इनका लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करें, क्राउड कमाल की होती है, आपको 70 साल के लोग भी मिलेंगे और 20 साल के लोग भी। इंटरनेट पर जो उनकी क्लिप्स हैं, उनके गानों के वीडियोस हैं, उनके कमेंट्स के नीचे हर उम्र के लोग मिलेंगे और एक ही जैसी बातें करेंगे। वन ऑफ दोस रेयर आर्टिस्ट जो सारी जनरेशंस के फासले मिटा रहे हैं। और जो ये वाला गाना है तेरे मेरे साथ, अक्स एल्बम का गाना है, इसका वीडियो क्यूबा में शूट हुआ था। धूप, खुली सड़क, एकदम फ्री फीलिंग। गाना सुन के आप बहुत हल्का हल्का फील करोगे और सनी फील करोगे। इट्स वेरी सनशाइन वाला सॉन्ग, टॉक्स अबाउट कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, कि जब सारा जग सोता है। ये गाना उस अजीब से खास से कनेक्शन की बात करता है जो वर्ड्स में बोलना मुश्किल है, तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लो। लगी अली की आवाज में दिस इज तेरे मेरे साथ प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन कैसेट क्लासिक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

अगर सनशाइन इमोजी एक गाना होता ना तो लकी अली का दिस सॉन्ग वुड बी इट बिकॉज वाओ हाउ डू यू डू दिस लकी अली की आवाज में. दिस वॉज तेरे मेरे साथ ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर जल्दी आओ. 90s 2000s का वो जो भी गाना है जिसको सुन के आज भी आप बड़े खुश हो जाते हो ना कि यार इस गाने में ही बात थी, वही वाला गाना जानना है मुझे एट आरजे कनिका पर आके हमारे साथ शेयर करो. मैं और अश्का है, हम दोनों आपकी सारी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ बढ़ते हैं. आदित्य रिखारी रावत और कुटले खां का गाना, गाने का नाम ए अजनबी. 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री थी, हमने अपने 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने को शाउट आउट दिया। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। ज़ारा खान का गाना मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद हर्ष नुसी का साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। नूर खान एंड मधुर एक्सो के आरजू ने इस हफ्ते डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 8। देन संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 7। एश किंग का किनिया सोनी 4 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी 8 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ का डीलर इज द मोस्ट सीनियर सिटीजन सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन 19 हफ्तों से बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। 15 हफ्तों से डटा हुआ ये गाना आदित्य रिखारी रेवटों कुटले खा का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, कोई रीशफल नहीं हुआ है, ये दोनों गाने इन पोजीशंस पर डटे हुए हैं 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा, 18 हफ्तों से ये गाना भी डटा हुआ है, शीशा दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: Avicii. It's hot.
1: थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते

नमस्ते दोस्तों, आज की पारी सिर्फ गानों की नहीं, उन लोगों की है जो फैमिली चॉइस से बनती है। फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, जो बिना इनविटेशन के आ जाते हैं, बिना जजमेंट के सुनते हैं और बिना वजह साथ खड़े रहते हैं। फ्रेंडशिप डे स्पेशल में स्वागत है। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। शुरू करते हैं एक एवरग्रीन यारी एंथम के साथ। गाने का नाम है यार बिना चैन कहारे। लेट्स गो।

You know what, हर पार्टी का असली हाई ड्रिंक नहीं दोस्त होते हैं. Cheers to that. This is Club Mirchi Friendship Day Special with me, Mirchi Oyontika and DJ Richard.

हाँ लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक अच्छा दोस्त हो तो जर्नी जरूर ब्यूटीफुल हो जाती है। वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। इसीलिए तो है गाना, गाने का नाम है अगर तुम साथ हो।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are

क्लब मिर्ची डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और यौन दिखा के साथ दिस इज द फ्रेंडशिप डे स्पेशल एंड स्कूल बेंच हो या ऑफिस डेस्क लेट नाइट कॉल हो या मॉर्निंग कॉल्स दोस्त हर फेज में अपग्रेड होते ही रहते हैं तरसते हैं हम ऐसी फ्रेंडशिप के लिए

हाँ हाँ, दो पापी एक साथ मिल गए तो दोस्त बन जाते हैं। फ्रेंडशिप का रूल सिंपल है, एम्बेरस भी वही करेगा जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, राइट? आहो आहो टू दैट क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका बेबी।

पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ में, जहां जाने मिलते और दोस्त बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए। कुत्ते दोस्त, कमीने दोस्त, आई लव यू वाले दोस्त, मासूम दोस्त, दोस्त जिनमें बहुत कीड़े होते हैं, जिनके साथ आप हंसते हैं रोते हैं पर जिंदगी जीना सीखते हैं। पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं।

एक मेमोरी और सारी यारी फिर से रिवाइंड हो जाती है। दोस्ती के पल कभी नहीं बीतते, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है हम उसी दोस्त से रूबरू होते रहते हैं। क्लब मिर्ची विद डीजे विचरण मिर्ची और योंतिका।

हर गैंग का एक एंटरटेनर होता है जो सबका दिल लूट लेता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और उसके बिना ग्रुप इनकम्प्लीट है। कोई कहे कुछ भी कहता रहे, हम सब उस दोस्त के ही फैन है कि नहीं।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go
2: on a ride.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। सबसे ऑनेस्ट रिलेशनशिप जहां आई एम फाइन बोलने पर भी दोस्त समझ जाए, वही तो है फ्रेंडशिप। दिल से रे क्लब मिर्ची।

दोगे, लेकिन एक ऐसा दोस्त है जिसे कट्टी हो जाने पे भी भुला नहीं सकते। Cheers to that friendship club मिर्ची with DJ Richard and मिर्ची और योंतिका and best conversations उसी के साथ होती है जो 5 मिनट से शुरू होकर सनराइज तक चलती है, राइट? सुबह होने ही ना दे।

दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

achieve.

0: The beat goes on with Club Mirchi.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये है।

कुछ फ्रेंडशिप्स स्लोली शुरू होती है, लाइफ टाइम तक चलती है, गारंटी है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका, आहिस्ता आहिस्ता।

की जा रही है. दिस इज द फ्रेंडशिप डे स्पेशल विद मी मिर्ची और योंटिका एंड डीजे रिचर्ड. फ्रेंड्स ही वो लोग हैं जो आपकी वियर्डनेस सेलिब्रेट करते हैं. ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं.

डांस स्टेप्स याद हो या ना हो, दोस्त साथ हो तो फ्लोर अपना है। जूते दो, पैसे लो और हमारे साथ नाचते रहो ऑन क्लब मिर्ची।

I'm gonna go to the bathroom.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और हर इंसान को लाइफ में सिर्फ एक ऐसा बंधु जरूर मिलना चाहिए जो बस साथ रह जाए, नो कंडीशंस अप्लाई।

समझते हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता।

लेकिन आज मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने न देखी होंगी

मिर्ची तो जरूर बदमाश है, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, लेकिन बाकी बातें बाद में। पहले एक और गाना चाहिए यार, दिस इज द फ्रेंडशिप डे स्पेशल।

चरण मिर्ची और यौन का फ्रेंडशिप डे स्पेशल जारी है। दोस्ती का कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं होता, सिर्फ मेमोरीज बढ़ती रहती है। एंड द क्लाउड स्पेस नेवर रन्स आउट माहिया।

हाँ सनम तेरी कसम, गुड फ्रेंड्स आर लाइफ्स रेयरेस्ट प्लेलिस्ट। अगर आपको एक सच्चा यार ना मिले तो जिंदगी बर्बाद। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और एन मिर्ची और योंटिका।

आज अपनी गर्ल गैंग को टैग करना मत भूलना क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका सेलिब्रेटिंग एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप्स। गाने का नाम है वो मनिया।

मिर्ची इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो इन द मॉर्निंग्स व्हेन यू वेक अप यू नो मूड नहीं होता है काम करने के लिए बट अगर फेस्टिवल डे होगा कोई उत्सव होगा देन वी वेक अप अर्ली बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि घर में बहुत एक्साइटमेंट होता है नए कपड़े होते हैं खाना होता है प्लान्स होते हैं पूजा पाठ होगा कुछ तो एक्टिविटी होगी गेस्ट आएंगे हम कहीं जाएंगे जो रूटीन होता है वो टूट जाता है आई रियली लव फेस्टिवल्स especially Indian festivals because हर फेस्टिवल में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है एंड आई थिंक दैट इज वॉट रियली एक्साइट्स मी और नया कॉन्सेप्ट होता है यू नो दिवाली के टाइम हम लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं दशहरे के टाइम हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचते हैं कंप्यूटर की पूजा करते हैं जब होली होती है तो रंग के बारे में सोचते हैं सो मेनी डिफरेंट आइडियाज कीप कमिंग सो जब उत्सव होता है तो उत्सव इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और भारत उत्सवों का देश है यू नो इतने उत्सव होते हैं रोज रोज कोई ना कोई उत्सव होता है और अलग अलग जगह में अलग अलग उत्सव होते हैं उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतने उत्सव देवी देवताओं के उत्सव होते हैं पेड़ पौधों को लेके उत्सव होता है पशुओं को लेके उत्सव होता है पितरों को मतलब एंसेस्टर्स को लेके भी उत्सव होता है इतने उत्सव होते हैं यू नो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो जैसे बाइबल में कहते हैं कि यू नो God created the world in six days. On the seventh day, He rested. इसलिए हर हफ्ता एक holiday होता है. In amongst Muslims वो Friday होगा, Jewish लोगों में वो Saturday होता है, Christians में वो Sunday होता है. लेकिन ऐसा weekly holiday का concept Indian religions में नहीं है. Buddhism, Jainism and Hinduism में. यहाँ पे उत्सव कोई भी दिन मनाया जाता है based on either some event that happened या कोई season variation या you know basically the climate has changed. तो राजा उत्सव डिक्लेयर करता था और हॉलीडे होता था तो देयर इज नो रिदमिक हॉलीडे इट इज इररेगुलर कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है एक पूरा सीजन होता है जब आप ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं करते हो जिसको चातुर्मास कहते हैं रेनी सीजन का सो आई थिंक फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट थिंग टू डिस्कस नॉट अ स्पेसिफिक उत्सव बट जनरली उत्सव का मतलब क्या है वॉट डज इट मीन वॉट इज इट्स सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं हम लोग वॉट इज इट्स वैल्यू इन आर लाइव सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो
0: मदन उत्सव और वैलेंटाइन्स डे में क्या है सिमिलैरिटी बताएंगे देवदत्त कीप लिसनिंग

सर्वज्ञशक्तन तवत्सल सर्वशेषिन् स्वामीं सुशील सुलभाश्रुत पारिजात श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमन् कृपाजल निधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्तन तवत्सल।

श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। रेखामयध्वज सुदाकलशात पद्र वज्रांकुशाम्बुरुहकल्पक शङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्री वेंकटेश चरणौ

प्रशंसौ यौ मध्य उत्स इति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्तथेति तव पाणितल प्रतिष्ठौ श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर यू थिंकिंग ऑफ व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, एंड फेस्टिवल्स आर देयर ऑल द टाइम। कल भी फेस्टिवल्स थे, आज भी फेस्टिवल्स हैं। पहले जमाने में भी फेस्टिवल्स होते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे, और आज भी नए नए फेस्टिवल्स होते हैं। उनका रूप बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने अगर आप कालिदास की कविताएं पढ़ें तो वहां पे मदनोत्सव होता था। मदन मतलब कामदेव, गॉड ऑफ लव, और वी यूज टू सेलिब्रेट द गॉड ऑफ लव। तो मदनोत्सव होता था वसंत उत्सव में, इन स्प्रिंग टाइम, और गणिकाएं नाचती थी। ऑल द गर्ल्स वर इनवाइटेड टू द किंग्स गार्डन, राजा के जो गार्डन था वहां पे उनको बुलाया जाता था, वहां पे खाना पकता था। दे वुड सिंग एंड डांस एंड प्ले ऑन स्विंग्स, और मजा करते थे, कामदेव की पूजा करते थे कि हमारी जिंदगी में भी प्रेम आ जाए, लव आ जाए। सो इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ लव। आजकल हम मदनोत्सव को नहीं मानते हैं, लेकिन वी टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे। ऑफ कोर्स सम पीपल गेट वेरी एंग्री, वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, एंड आई कीप सेइंग अरे ये मॉडर्न वर्जन ऑफ मदनोत्सव ही है, कामदेव की पूजा है। यू नो होली इज ऑल्सो सेट टू बी रिलेटेड टू मदनोत्सव, वसंतोत्सव। अगर आप जितने भी ओल्ड काव्य पढ़े, संस्कृत काव्य, वहां पे मदनोत्सव के बारे में बहुत बताया गया है। फेस्टिवल ऑफ लव, वी सेलिब्रेट लव, वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट लव, कल भी आज भी। आई थिंक एवरी डे शुड बी मदनोत्सव, नॉट जस्ट ऑन सम डेज। सो एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट लव एंड वी शुड हैव अ गुड टाइम। बट इफ यू कांट, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर सेलिब्रेट लव। थिंक अबाउट द पर्सन हु लव्स यू एंड होप दैट यू आर लव्ड इक्वली। ऐसी ही बातें हम डिस्कस करेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो, जहां पे हम वेद पुराण आख्यानों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका रेलेवेंस इन आर डे टू डे लाइफ ढूंढते हैं।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: राम कृष्ण के जन्मदिन तो मनाए जाते हैं, पर शिव का क्यों नहीं, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। हर देवी देवता का एक उत्सव होता है और उत्सव के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। सो स्टोरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन उत्सव। जैसे जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, सो दैट इज व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। जब ईस्टर की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जीसस रेजरेक्टेड हिमसेल्फ। यू नो, रमजान इज अ फेस्टिविटी व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कुरान वाज बीइंग नरेटेड सो फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो मंथ को रमजान कहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, समहाउ स्टोरी इज रिलेटेड टू ए फेस्टिवल। कृष्ण जन्म की एक उत्सव होती है, राम जन्म का एक उत्सव होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा शिव का जन्म के बारे में कोई फेस्टिवल नहीं होता या दुर्गा देवी के जन्म के बारे में, बिकॉज ये स्वयंभू है, ये अनंत है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, उनका मरण नहीं हुआ है, दे वर नेवर बॉर्न, दे नेवर डाई, वो अमर हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो वी विल नेवर टॉक अबाउट शिवा बींग बॉर्न, वी विल नेवर टॉक अबाउट देवी बींग बॉर्न और विष्णु बींग बॉर्न, बट वी विल टॉक अबाउट राम का जन्म के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि देखो कैसे कहानियों के माध्यम से एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। ऑफ कोर्स शिव की पूजा होती है, शिवरात्रि होता है, शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो ये फेस्टिवल किसके लिए होता है? कहते हैं कि उस दिन शिव जी की शादी हुई थी, दैट इज वाई शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू हिज मैरिज, नॉट टू हिज बर्थ और एनीथिंग। सो अलग अलग स्टोरीज होते हैं। जब हम उत्सवों के बारे में बात करते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस स्टोरीज विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर फ्रेंड्स, कि आज ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स आर नॉट ऑलवेज रिलीजियस, देयर कैन बी आल्सो सेक्युलर फेस्टिवल्स। जैसे हार्वेस्ट टाइम में जब हार्वेस्ट होता है, तो जैसे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होता है, दीज आर नॉट रियली रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल्स, क्रॉप साइकिल्स, हार्वेस्ट टाइम, सोइंग द सीड। तो लोग फेस्टिवल्स मनाते थे। जब टैक्स कलेक्शन खत्म हो जाता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, नॉट एवरीथिंग इज रिलीजियस। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, देयर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर पॉलिटिकल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू सेक्युलर आइडियाज लाइक नेशन स्टेट। बर्थडेज आर ऑल्सो नॉट रिलीजियस फेस्टिवल, बट दे आर फेस्टिवल्स। सो ऑन द बर्थडे यू आर सेलिब्रेटेड बाई योर फ्रेंड्स, सो दैट इज ऑल्सो ए उत्सव। ऐसे ही बातें अबाउट फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एंड सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन मिर्ची, द देवदत्त पटनायक शो।
2: आज फेस्टिवल्स में बाजार हैं या बाजार में फेस्टिवल्स, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: Mitchie. It's hot.
1: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
2: जहाँ पे हम फेस्टिवल के ऊपर बात कर रहे हैं।
0: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
0: कॉलिंग देवदत्त
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस, सो कॉल इन, आई एम वेटिंग।
4: हाय देवदत्त, मैं हितेश बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि फेस्टिवल्स पर मार्केट ज्यादा हावी होता जा रहा है, ओरिजिनल स्टोरीज तो जैसे गायब ही हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है?
2: थैंक यू हितेश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स की शुरुआत हमेशा अध्यात्म से शुरू होता है या एग्रीकल्चरल फेस्टिवल से शुरू होता है, कोई इवेंट से शुरू होता है, धीरे धीरे धीरे बाजार उसमें आ जाता है, मार्केट बिकम्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज ज्यादातर क्या खाना मिलेगा, क्या गिफ्ट मिलेंगे, क्या पार्टी करेंगे, ये फोकस हो जाता है। ऑल फेस्टिवल्स हैव एन इकोनॉमिक बेसिस, सो फेस्टिवल का पर्पस इज टू स्पेंड मनी एंड क्रिएट एक्सचेंज। आप देखेंगे जहाँ पे तीर्थ यात्रा होता है वहाँ पे मेले भी होते हैं। तीर्थ यात्रा, बाजार और मेला का बहुत क्लोज संबंध है। तो पूजा पाठ के साथ बाजार हमेशा साथ में रहेगा। मंदिरों के बाहर बाजार होता है, चर्च के बाहर बाजार होता है, लोग जब मस्जिद जाते हैं तो बगल में आप देखेंगे फूड स्टॉल्स होंगे क्योंकि फैमिली जाती है वहां पे। सो इट इज एन इकोनॉमिक स्पेस, सो वी शुड नॉट रिजेंट इट, ये होता है, इट्स ओके। अभी देखिए ना, जैसे क्रिसमस में ज्यादातर लोग जीसस क्राइस्ट की बात नहीं करते, सेंटा क्लॉज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सेंटा क्लॉज तो कंप्लीटली कमर्शियल है, उसके आध्यात्म ईसाई धर्म के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। गिफ्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं हम लोग, थैंक्स गिविंग डे के बारे में हम ज्यादातर, टर्की के बारे में लोग बात करते हैं, अमेरिका में लोग नहीं बात करते कि वो थैंक्स गिविंग है क्या, क्या इतिहास था। सो दिस इज एवरीवेयर, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। और ऑफकोर्स आजकल जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, बिकम सो पावरफुल एंड मनी हैज बिकम सो पावरफुल दैट वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग बियॉन्ड मनी, वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग। शादी भी संस्कार नहीं रहे, अभी तो थिएटर बन गया है, नाच गाने का थिएटर बन गया है, वेयर हस्बैंड वाइफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड आर फोकसिंग ऑन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स। होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, वी आर इन अ डिफरेंट टाइम, मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बट धीरे धीरे धीरे करके जब लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जब हम अर्थ ढूंढने लगते हैं अपने जीवन में, तो हम सेलिब्रेशंस को छोड़ के उनके पीछे रहस्य जो है उसे ढूंढते हैं। यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड शेयर द आइडियाज अबाउट फेस्टिवल जो हम देवदत्त पटनायक शो में डिस्कस करते रहते हैं ऑन मिर्ची, एंड एनकरेज देम टू लिसन टू द शो, सो दे विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशंस, इट इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग, विचार, भाव, रस, बहुत चीज होते हैं फेस्टिवल्स में, नॉट जस्ट मनी।
4: इट वॉज रियली हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू हितेश।
0: On Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik Show.
5: क्यों बदलती हैं फेस्टिवल्स की डेट्स? क्या है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

तुलसीपुरपतिं भज विश्वनाथं भूताधिपं भुजगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशांकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहां पे आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फन फ्रॉलिक फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: द देवदत्त पटनायक शो
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो ज्यादातर अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिरों में रोज एक ना एक फेस्टिवल होता है। बनारस में एक फेमस कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार होते हैं। सो यू नो वी हैव दिस विच इज द कल्चर ऑफ फेस्टिवल्स। सो मोस्ट फेस्टिवल्स हैपन ऑन द वैक्सिंग मून टाइम। वेरी फ्यू फेस्टिवल टेक प्लेस इन द कृष्ण पक्ष और द वेनिंग मून, जब द मून इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, अमावास की तरफ जाते हैं। सम ऑफ दोस फेस्टिवल्स आर जैसे कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म का फेस्टिवल इज इन कृष्ण पक्ष, महाशिवरात्रि इज इन कृष्ण पक्ष, और इनफैक्ट हर महीने एक शिवरात्रि होता है, जस्ट बिफोर अमावास के दिन शिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवरात्रि, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि होता है। ट्रेडिशनली शुक्ल पक्ष को ज्यादा वैल्यू दिया गया था और कृष्ण पक्ष को कम वैल्यू दिया जाता है। और वन ऑफ द स्टोरीज इज दैट देवासुर में जब संग्राम हुआ था तो ब्रह्मा ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष होगा वो देवताओं के साथ जुड़ा होगा और जो कृष्ण पक्ष होगा वो असुरों के साथ जुड़ा होगा। जब उत्तरायण होता है तो वी मूव फ्रॉम स्प्रिंग टू समर टूवर्ड्स रेन्स, दक्षिणायण में वी मूव फ्रॉम द रेनी सीजन टूवर्ड्स विंटर टूवर्ड्स स्प्रिंग। तो वहां पे भी डिविजन हो गया था कि देवता उत्तरायण में बैठते हैं और असुर दक्षिणायण में बैठते हैं। ऐसे द वर्ल्ड इज बीइंग चर्न्ड, एक मंथन हो रहा है। सो फेस्टिवल्स आर ऑल्सो रिलेटेड ऑलवेज विद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स associated with astronomy, मतलब तिथि, phases of the moon, seasons, उत्तरायण दक्षिणायण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तारे कहाँ पे हैं, जैसे कुंभ मेला will be associated with the Aquarius constellation, तो stars, planets, seasons, moon, movement of the sun, all of this play a very important role in festivals. इसलिए festivals के date बदलते रहते हैं lunar calendar के हिसाब से। solar calendar के कुछ festivals होते हैं जैसे मकर संक्रांति, वो हमेशा every year January 14th को ही आएगा because it's a solar festival, लेकिन दिवाली दिन will keep shifting because it is a lunar festival. So whenever you discuss festivals, remember to look at the calendar. It is a great way to explain to children calendar, अपने दोस्तों के साथ कि नेचर में क्या हो रहा है, what is happening to the sun, what is happening to the moon, what is happening to the stars. Our festivals teach us about astronomy. तो अगर स्कूल में नहीं पढ़े हो तो at least festival के टाइम पे तो सीखो, and these are the kind of things that you must grab from the Devdutt Patnaik show on Mirchi, share it with your friends, show off with your friends and encourage them to listen to the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
2: The Devdutt on Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik show.
4: Kiski hai Diwali? Ram ki, Krishna ki ya Lakshmi ki? Kyun hai controversy? Batayenge Devdutt. Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत उत्सवों का देश है। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, वेदर इट इज हिंदू फेस्टिवल्स, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जैन फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, सेक्युलर फेस्टिवल्स, एथियस्ट फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल, हमको बहाना चाहिए फॉर पार्टींग। और फेस्टिवल्स हमारा सांस्कृतिक पार्टी होता है। बट यू नो nowadays of course सबको कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है, सो नाउ देर आर कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट ये फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है। सो आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन। और दिवाली के टाइम में एक स्टोरी है। अगर आप बोलो दिवाली हम क्यों मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मी के लिए हम मनाते हैं दिवाली, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली के दिन पे, एंड लक्ष्मी आ रही है इसलिए हम दीप जलाते हैं ताकि वो हमारे घर आए। लिए लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये राम जी ने अयोध्या आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ राम, इट इज नथिंग टू डू विद लक्ष्मी, और क्योंकि राम आ रहे हैं उनके साथ लक्ष्मी आ रही है। तो राम भक्त लोगों के वो बोलेंगे अलग आइडिया, जो लक्ष्मी भक्त हैं, जो वणिक समाज है, द ट्रेडर्स विल से नहीं नहीं लक्ष्मी की पूजा है। और एक ग्रुप आ जाता है श्री कृष्ण वाले, बोलेंगे कि नहीं नहीं यहाँ नरक चतुर्दशी होता है तो नरकासुर को श्री कृष्ण ने वध किया था इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सच क्या है बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बलि प्रतिपाद होता है, मतलब यहाँ पे ऑन दिस डे वामन ने बाली को जमीन पाताल लोक में भेज दिया था, तो मे बी दैट इज द रियल स्टोरी। तो इतने स्टोरीज में भी मेरा ये विश्वास है कि दिवाली फेस्टिवल सबको इतना पसंद है तो अपने फेवरेट गॉड की स्टोरी उन्होंने थोप दी, एंड वी ऑल बिलीव इट। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जितने स्टोरीज उतना मजा। व्हाई डू वी वांट एक ही स्टोरी होना चाहिए? हमारा देश, वी आर अ डाइवर्स कंट्री, विभिन्नवाद वाला देश है। तो जिसे राम की स्टोरी सुनना है उन्हें राम की स्टोरी सुनने दीजिए, जिनको कृष्ण की स्टोरी सुनना है उन्हें कृष्ण की स्टोरी सुनना है, जिनको विष्णु की स्टोरी सुनना है वो विष्णु के बारे में सुनेंगे, जिसको लक्ष्मी के बारे में सुनना है वो लक्ष्मी के बारे में सुनेंगे। भाई बहन कहेंगे कि नहीं भाई दूज, दिवाली इज ओनली अबाउट भाई दूज। सो यू नो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट अ फेस्टिवल, एंड आई थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सीज, वी शुड एंजॉय द स्टोरीज, फोकस ऑन द पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव। फेस्टिवल इज अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, मांगल्य, घर में शुभ आना चाहिए, लाभ आना चाहिए। दीज आर द आइडियाज दैट वी विल डिस्कस ऑन द देवदत्त पटनायक शो। वी कीप टेलिंग यू स्टोरीज हमारे संस्कृति के बारे में, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, सो दैट यू कैन शो ऑफ विद योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन कल्चर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पिक अप द फोन एंड आस्क। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहा हूं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। सो आई एम वेटिंग।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: दिवाली पर पटाखे जलाना सही या गलत, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: हेलो देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचे की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस जाति। सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। शो अभी खत्म होने वाला है और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज यू नो अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी के वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते हैं। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt onmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show. The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड के लिए इज अ न्यू स्टार्ट, एक नई कहानी, लेकिन हर कहानी नई याद बन के नहीं रहती, और शायद इसलिए आज हम एक अजीब ईरा में जी रहे हैं। फिल्में भी वापस आ रही हैं, कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, सॉन्ग्स भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पता है यादें बनाना उन्हें दोबारा बेचने से कई ज्यादा मुश्किल होता है। ऑगस्ट शायद इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है। यू गॉट टॉक्सिक, यू गॉट आवारापन, यू गॉट बंटवारा 1947, तो क्या 2026 सिर्फ हिट्स देगा या फिर हमें कुछ ऐसी फिल्में और गाने भी देगा जिनके बारे में हम 10 साल बाद भी बात करेंगे। इसी होप के साथ वेलकम टू द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, एंड आई एम सुरेन सुंदरम,
0: नंबर 20।

a banger by Jasmine Sandlers, और नंबर 20 फ्रॉम धुरंधर, और नंबर 19 पर डेब्यू कर रहा है आंखों से तूने ये क्या कह दिया। एक ऐसे गाने का रीमेक, इसके ओरिजिनल वर्जन को किसी मेकओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब मजेदार बात यह है कि ये जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसके अंदर हीरो राघव जुयाल डायरेक्टर से खुद पूछते हैं क्लासिक गाना रीमेक क्यों कर रहे हो, और जवाब मिलता है रिकॉल वैल्यू। बस अफसोस इतना सा है, रिकॉल तो सिर्फ ओरिजिनल का रह जाएगा, नया वर्जन सिर्फ उसकी डीजे मिक्स कॉपी बन के रह जाएगी। फिर भी काउंटडाउन पर उसकी जगह बन रही है। दिस इज आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, स्टारिंग राघव जुयाल। इस हफ्ते गाना नंबर 19। नंबर 19।

0: if you want to play. Fall in line, little boy, because you can't run away. There's nowhere to hide. There's nowhere to go. I've shattered the ceiling. There's blood on the floor. A fight to the finish. Or a kiss goodbye. Get your last wish, baby, because you're gonna die.
1: Have you noticed? जब जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलना कम कर देते हैं, गाने चला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी आवाजें सुनी, बहुत सारे नारे सुने, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हर जगह वही तीन गाने सबको सुनाई दे रहे थे, एक जो इस देश की पहचान बन गया है,

दूसरा जो अब हर मुश्किल घड़ी में इस देश को मोटिवेट करता है। और फिर ये तीसरा और आखिरी गाना जो अपने अंदर की आवाज को झंझोड़ता है। सोचिए ये तीनों गाने आज के नहीं है, 2 दशक से ज्यादा पुराने हैं। फिर भी जब इस जनरेशन को अपनी फीलिंग्स को आवाज देनी थी, इन्होंने कोई नया गाना नहीं ढूंढा, वापस इन्हीं गानों तक लौटाए। एक बार जो गाना आवाज बन गया, उस आवाज को दबाना मुश्किल होता है। हर जनरेशन उन्हीं गानों को अपना लेती है जो उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझ ले। इस हफ्ते मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक एआर रहमान की वो कॉम्पोजिशन, इसने हर बार एक नई जनरेशन के साथ फिर से जन्म लिया, फिर से उस पीढ़ी की आवाज बनी। टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 It's hot. Suren ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Number 17.

ईरा में एक ऐसी आवाज होती है जिसके साथ हर नया सिंगर कंपेयर होना शुरू हो जाता है। कभी रफी साहब थे, कभी किशोर कुमार, फिर उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, और अब पिछले डेढ़ दशक से इट इज अरिजीत सिंह। इसलिए जब कॉकटेल 2 के प्रमोशन शुरू हुए और तुझको को स्टेज पर गाने की बारी आई तो अरिजीत तो वहां नहीं थे, लेकिन एक आवाज और थी, एक अलग आवाज, एक सिंगर जो अभी भी अपना सपना जी रहा है। नाम है सोनू इश्तियाक खान, और तुझको को गाने का रंग इनका बिल्कुल अलग था।

0: खूबसूरत। देखिए ये अरिजीत बनने की कोशिश नहीं है, ये एक सिंगर का अपना मौका ढूंढने की कोशिश है। शायद हर बड़े आर्टिस्ट की लेगेसी भी कुछ ऐसी ही होती है, वो सिर्फ अपने गाने नहीं छोड़ता, अपने बाद आने वालों के लिए एक स्टैंडर्ड छोड़ जाता है। कौन जाने आज जिस सिंगर को हम स्टेज पर अरिजीत के गाने गाते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कल उसके गाने कोई और गा रहा होगा। फिलहाल नंबर 16 पर द हॉन्टिंगली ब्यूटिफुल जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धू रंधर।
1: नंबर 16

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 40.

एक वार्निंग है, इस गाने को अंडर एस्टिमेट मत करना। पहली बार सुनोगे तो अच्छा लगेगा, दूसरी बार सुनोगे तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और तीसरी बार बस फिर ये गाना दिमाग से निकलेगा ही नहीं। और शायद इसलिए इसका नाम भी मदहोश है। टॉक्सिक का ब्रांड न्यू ट्रैक दैट डेब्यूज ऑन द चार्ट्स ऑन नंबर 14। लेकिन इस गाने ने मुझे एक और चीज रियलाइज करवाई। पिछले साल जब पूरा देश ये वाला गाना गा रहा था,

0: हम फहीम अब्दुल्ला की बात कर रहे थे, हम तनिष्क बागची की बात कर रहे थे, लेकिन एक नाम शोर के बीच कहीं दब गया, अरसलान निजामी। और अगर आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन से वाकिफ हैं तो मधोश सुनते ही आप समझ जाओगे ये उसी दुनिया का एक्सटेंशन लगता है, वही फील, वही एटमॉस्फेयर, वही म्यूजिकल डीएनए। और एक बात ने तो सच में दिल जीत लिया यार, फहीम अगर चाहता तो ये गाना खुद गा सकता था, लेकिन उसने सिद्धार्थ बसरूर को ये गाना दे दिया। एक आर्टिस्ट सच में तब और बड़ा बन जाता है जब उसे सिर्फ अपनी आवाज नहीं अपनी कॉम्पोजिशन की भी फिक्र होती है। और यकीन मानिए ये सिर्फ डेब्यू नहीं है, मुझे लगता है मधोश तो बस अभी शुरू हुआ है। लेकिन जो अगला गाना है वो उस फ्रेंचाइज से है जिसका इंतजार 19 सालों से हो रहा था, उस दुनिया में सब जाना चाहते थे, आवारापन की दुनिया। लेकिन पहला गाना उस गहराई तक नहीं ले जा पाया जिसकी शायद सबने उम्मीद की थी। द सॉन्ग दैट साउंड्स ईरली सिमिलर टू सैयारा, दिस इज वे जुनून बाय सुबोध शर्मा, म्यूजिक मिथुन का और लिरिक्स सईद कादरी भाई के। इस हफ्ते टू स्पॉट्स डाउन ऑन नंबर 13।
1: नंबर 13।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 12।
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

एक लिरिसिस्ट जब खाली कागज के सामने बैठता होगा या होगी तो उनके दिमाग में सबसे पहले गुलजार साहब वाले लफ्ज आते होंगे या शायद जावेद साहब वाली शायरी आती होगी। लेकिन फिर डायरेक्टर बोलता होगा, यार मुझे गाना चाहिए जिसका नाम हो इश्क कमीना, या शायद गाने का नाम होना चाहिए चटनी, और वहीं से असली क्रिएटिविटी शुरू होती होगी। क्योंकि मुश्किल खूबसूरत लफ्ज लिखना नहीं होता, मुश्किल होता है ऐसे लफ्ज को हिट बना देना जिसे किसी ने गाने में इमेजिन ही ना किया हो। सच बताइए, आपने कभी अपने प्यार का इजहार इस तरह किया है?

यार मैंने किसी लड़की को कभी नहीं बोला कि उसको देख के मेरा दिल डिंग डोंग करने लगा है। इनफैक्ट मैंने तो कभी किसी लड़की से ये बोलने की भी हिम्मत नहीं की।

देखिए ना, आज ये वर्ड सुनते ही डिक्शनरी या किचन याद नहीं आता, सीधा गाना याद आता है। शायद यही लिरिसिस्ट की असली जीत होती है। वो सिर्फ गाना नहीं लिखते, वो एक लव्स की आइडेंटिटी ही बदल देते हैं। और अगर ऐसी हिम्मत की बात हो रही है तो फिर एक गाना डेफिनेटली बनता है जिसके टाइटल को सुनकर लोग पहली बारी में शॉक हो गए थे, लेकिन जब गाना सुना तो गाना कल्ट बन गया। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट ट्रैक भाग, डीके बोस भाग, डेली बेली से अमिताभ भट्टाचार्य जी को मेरा शत शत प्रणाम। स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

0: बस यही तो कमाल है हिंदी फिल्म म्यूजिक का। कुछ सेकंड पहले तक आरी आरी जैसे गानों के साथ खून तेजी से दौड़ रहा होता है, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि लगता है कि दुनिया जीत लोगे, और अगले ही पल अगला ही गाना उसी दिल को धीरे से पकड़ लेता है, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आवारापन का वो गाना जिसका इंतजार सिर्फ फिल्म के फैंस नहीं पूरा म्यूजिक सर्किट कर रहा था, इस हफ्ते वो काउंटडाउन पर जरूर डेब्यू करेगा। तो बस प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आई नीड टू से दिस दैट आई लव अमाल मलिक। He's like my younger brother, और अमाल की कही हुई एक बात मेड मी फील सो सो प्राउड अबाउट हिम।
1: I'm the SRK of music and romance, who I believe another who soul travels just like me is Mithun. I think an R like mere senior hai, but he's the only one I feel. And I'm har jagah aisa bolta hu, yani egoistically nahi ki I'm the SRK of music and romance mein main hu, so I believe the best. But someone who always hum log mein ek yani competition nahi rahega, but I think someone who touches my soul also on that level is him. Wo utni purity se he also works. So we are the only two people who are trying to do in our generation purest work.
0: यार कितनी खूबसूरत बात है। हर कंपोजर का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक मेलोडी होती है, अपना एक इमोशन होता है, और जब एक कंपोजर दूसरे कंपोजर की सोच को इतनी इज्जत दे तो समझ लीजिए म्यूजिक सिर्फ कंपटीशन नहीं कॉन्वर्सेशन बन गया है, और इस कॉन्वर्सेशन का नया चैप्टर आज ऑफिशियली शुरू होता है ऑन द चार्ट्स, डेब्यूइंग स्ट्रेट ऑन नंबर 9। रश्मि विराग के लव्स, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन और अरिजीत सिंह की आवाज, ये आरापन नंबर।

0: टॉक्सिक का बज देख के एक बात तो तय है, अगस्त बॉलीवुड के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल महीना नहीं होने वाला है। एक तरफ यश 4 साल बाद केजीएफ के बाद स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं, दूसरी तरफ 19 साल बाद आवारापन अपनी कहानी आगे बढ़ा रही है। और फिर एक ऐसी फिल्म है जिसका ट्रेलर देखते ही मुझे एक बात रियलाइज हुई, बंटवारा 1947 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी स्टोरी या उसका स्केल नहीं है, उसकी पार्टनरशिप है। आमिर खान एज अ प्रोड्यूसर, एआर रहमान और जावेद साहब, द लगान, द जोधा अकबर डुओ, उनका कॉम्बिनेशन फिर एक साथ। लेकिन जिस रियूनियन ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया है वो है राजकुमार संतोषी और सनी देओल का रियूनियन। सनी देओल की सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस याद कीजिए, घायल, दामिनी, घातक, तीनों के पीछे एक ही डायरेक्टर थे, राजकुमार संतोषी। और ये तीनों फिल्में सिर्फ हिट्स नहीं थी, ये वो फिल्में थी जिन्होंने सनी देओल को सनी देओल बनाया। अरे यार, बॉर्डर और गदर तो काफी बाद में आए थे, और जब भी ये दोनों साथ आते हैं फिल्म तो हमेशा हिट ही मिलती है, लेकिन सनी देओल का एक नया वर्जन भी मिलता है।
1: आप लोगों ने आई एम श्योर घायल देखी है, दामिनी देखी है, घातक देखी है, और अब बंटवारा आ रही है। राज और मेरी कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसी रही है जहाँ पर पता नहीं कैसे हम कुछ भी, राज मुझे कुछ बात करेगा और मैं, बात सही होती है, कहानी अच्छी होती है, तो तुरंत हम लोगों की वेवलेंथ सेम है, वी गेट एक्साइटेड और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को चैलेंज करने की व्हाइल वी आर वर्किंग। और सब फिल्में हमेशा एक समाज के साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए हमारी कहानियाँ हमेशा शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब से, और वो हर इंसान जो देखता है उसके अंदर उसको कुछ इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसे अपनापन दिखता है। That's a kind of cinema I love to do and I've been doing.
0: बस इसलिए बंटवारा 1947 का इंतजार सिर्फ एक और फिल्म का इंतजार नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा की एक लेजेंडरी जोड़ी फिर से अपना जादू दिखाने आ रही है। But right now, जादू है गुरु रंधावा का, जिनका गाना चार्ट्स पर नंबर 7 पर है इस हफ्ते। कहर फ्रॉम धमाल 4 इज हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20।
2: Number 7.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 6।

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है, उसके वो पहले कुछ सेकंड्स जहां गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, द कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

बस इतना ही, ना वोकल्स ना लिरिक्स। फिर भी अगर आप 2008 में थे तो आपको पता था हाथू है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है, उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माई पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडर रेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा। वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, सॉन्ग बाय माई ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ तू है।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3।

और दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम धमाल दे दे प्यार दे. देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर. एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस. लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है. धूम जैसे फिल्म कहां थी, ये स्टाइल था, एटीट्यूड था. पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया. सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी. फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया. डूड ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2. एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी. यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर, लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई. और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है. रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है, फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए. सच कहूं, मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है. मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया, उसे सिर्फ कमबैक नहीं, ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए. सो YRF, टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है आप ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना. तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है. एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर, इट्स स्टिल नंबर 1. दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह. नंबर 1.

0: एक और हफ्ता और गहरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: It's hot. Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

0: Mirchi, it's hot.
1: This is something special.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक। सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे गिरा ये गाना, फीचरिंग ज़ारा खान एंड स्केल्स। गाने का नाम है मूव बॉडी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। काउंटडाउन की शुरुआत with Move Body on Gana number 10. At RJ Kanega on Instagram par koi gana share karna, koi baatein batani ho, bindaas hit me up. Stay tuned for the full countdown. This is Move Body playing right next for you only on Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanega. Enjoy.
0: Number 10.

0: बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ पता नहीं। ज़ारा खान का गाना दैट वाज मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। ये गाना जब इस काउंटडाउन से बाहर भी हो जाएगा तो शायद याद नहीं रहेगा, बिकॉज इट डिड नॉट मेक मी फील एनीथिंग एंड फीलिंग इज एवरीथिंग।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: आई सेड व्हाट आई सेड, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। द शो इज अबाउट द सॉन्ग्स व्हिच मेक यू फील समथिंग। पॉप सॉन्ग्स जो आर्टिस्ट अपनी आजादी से अपनी कहानी सुनाने के लिए लिखते हैं। किसी बड़ी फिल्म निर्देशक एक्टर एक्ट्रेस के लिए गाने नहीं बनते हैं, पर हर तरह के गाने होते हैं, कुछ मासी एंड कुछ ऐसे गाने जो शायद इतने बड़े स्केल पे नहीं फटते, लेकिन जितने लोग उन्हें सुनते हैं वो कुछ फील करने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक गाने को आज हम शाउट आउट देने वाले हैं। गाने का नाम है तारे बाय फरक। इससे पहले कि मैं वो गाना चलाऊं, आई वांट यू टू थिंक समथिंग। सोचो एक परिंदा पिंजरे में इतने दिन रह रहा है कि जब दरवाजा खुला तो उड़ना ही भूल गया। जिंदगी भर जिस आसमान को देखता रहा, अब जब वो आसमान उसके सामने है उसे डर लगने लगा कि अभी आगे कैसे जाना है, पहला कदम कैसे लेना है। एंड एक्चुअली ये परिंदे की बात ही नहीं है, ये हम सब हैं। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं टू बी ऑनेस्ट एक चुल होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा छुपा बैठा है। कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर कोई कलाकार, फिल्म, पेंटिंग, कोई आइडिया जिसका बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। पर हमने क्या किया, उसको लेके सारी विशेस को एक अलमारी के अंदर डाल दिया कि चलो पहले जिंदगी बना लेते हैं फिर सोचेंगे। अब वो अलमारी बंद ही रह गई और वो सपना अंदर ही रह गया। लेकिन मान लो एक दिन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो जो सारी विशेस हैं वो पूरी हो गई, अलमारी खुल गई, सपना बाहर आ गया, जो परमिशन चाहिए थी वो मिल गई, जो पैसा चाहिए था, वक्त चाहिए था, वो आपके सामने है, आसमान दिख रहा है खुला सामने। तो फिर सोचने वाली बात है कि क्या मैं और आप एकदम उड़ जाएंगे या उस दरवाजे को देखते ही रहेंगे और डर जाएंगे, उस परिंदे की तरह जो अब इतना यूज्ड हो गया है अपनी सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टेंसेस से, कि आज़ादी कैसी लगती है वो भूल ही चुका है। इसका कोई सही जवाब नहीं है और आपको मुझे तो बिल्कुल नहीं बताना है, पर सोचने वाली बात है। और यही सोचते सोचते अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ये गाना बिल्कुल आपको उसी कश्मकश में लाके खड़ा करेगा। पहचान छोड़ दी जीरो से दोबारा शुरू करने वालों के लिए, आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। It's playing right next for you on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है।

0: यार ये गाना ऐसी फील्स को हिट करता है जो जेन्युइनली मैंने छुपा दी थी अपने अंदर। गाने का नाम है तारे बाय फरक, साथ में उनकी आवाज है शाश्वत बलान की। अभी सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है, अपने अंदर के उस छुपे हुए आर्टिस्ट को निकालो। @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ दैट जो भी आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, व्हाटएवर यू डू, अगर आपको आपकी विश पूरी करने का एक चांस मिल जाए तो क्या करोगे, क्या है वो अंदर की चिल। @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है साडी सुन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, गाने का नाम आरजू बाय नूर खान एंड मधुर एक्सो। आरजू ने डेब्यू किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: हो चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: एश किंग की आवाज में गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ की आवाज में हमने सुना बैंगल्स, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर अ गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंड आज मैं जिस आर्टिस्ट से आपको मिलवाना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, इनके गाने को सुनने के बाद आप ये सवाल पूछोगे कि यार कनिका इससे पहले क्यों नहीं रिकमेंड किया। आर्टिस्ट का नाम है खोसला रघु। इस नाम में दो आर्टिस्ट हैं, ऋषभ रघुवंशी एंड संचित खोसला। टुगेदर दे मेक खोसला रघु। इनकी स्टोरी इज टफ ऑफ ड्रीम्स। ये दो दोस्त हैं, बोर्डिंग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। एंड आपने भी अपने दोस्त से कभी तो कहा होगा कि यार साथ में कुछ शुरू करते हैं, साथ में म्यूजिक करते हैं, साथ में ये करते हैं, और कहीं ना कहीं वो रह जाता है कुछ लोगों का। पर संचित एंड ऋषभ एज आर्टिस्ट, हम सबका वो सपना जी रहे हैं एंड दे आर सो गुड एट व्हाट दे डू। कोई बहुत बड़ी बैकिंग के साथ उन्होंने शुरू नहीं किया, काफी ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग एंड देयर अबिलिटी टू कनेक्ट विद देयर ऑडियंस। गानों में आपको फुल कंटेम्प्रेरी पॉप, क्लासिकल, हैवी वोकल्स, एवरीथिंग दैट मेक्स अस फील लाइक ये कौन से वाला गाना है, वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। इट साउंड्स वेरी न्यू एंड मॉडर्न येट रूटेड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल। आई रिमेंबर मेनी कॉन्वर्जेशंस विद बोथ ऑफ देम, एंड वो कभी भी ट्रेंड्स के पीछे भागते ही नहीं है। दे जस्ट मेक द सॉन्ग्स जो उन्हें पसंद हैं, एंड उनके कई सारे गाने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी ट्रेंड कर चुके हैं। सो येस, दे आर ट्रेंड सेटर्स। जो गाना आज हम स्पॉटलाइट करने वाले हैं, उस गाने का नाम है बेवजह। ये उस पहले वाले प्यार की बात है जो धीरे से ना आपकी पूरी दुनिया पे टेक ओवर कर लेता है। उनकी राइटिंग, म्यूजिक बहुत ऑनेस्ट है। अगर आप इंस्टाग्राम पे इन दोनों को देखेंगे तो जिस तरह से वो म्यूजिक बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत ऑनेस्ट है। आई स्वेयर मैंने कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं देखे जो अपने फैंस के साथ ये तक शेयर करते हैं कि इस गाने को बनाने के पैसे कितने लगे, इसका हमने कितना कमाया, अगर आप ये शुरू करोगे तो ये गलती मत करना। That's how you build loyal listeners. And Khosla Raghu, Gaana Indi Top 10 की तरफ से super mad respect to you guys. अपने radio sets की volume बढ़ा लीजिए। गाने का नाम है बेवजह। Khosla Raghu की नई album का पहला गाना, it's playing right next for you only on Gaana Indi Top 10। बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.

0: हजार रघु का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बेवजह, फीलिंग्स हैं बिल्कुल की दिल है जो मानता नहीं। एट आरजे करेगा इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना आर्टिस्ट जिन्हें आप स्पॉटलाइट देना चाहते हो मेरे साथ आके शेयर करो। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। अगले वाला गाना इज अनीश सरकार, हृदय का उड़ी उड़ी। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इन टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 5।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज़, गाने का नाम है डीलर। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

And the song we're going to feature this week is... गाने का नाम है तेरे मेरे साथ और आर्टिस्ट का नाम बता देती हूँ पर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज लकी अली की आवाज ऐसी है कि पहले सेकंड में हम पहचान जाते हैं कि ओ ऑफ कोर्स दिस इज लकी अली। अब मेरा काम तो गाने के बारे में बात करना, गाने सुनाने का है, लेकिन कभी कभी जब सड़कों पे निकलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनसे उनके रिएक्शंस जानने की कोशिश करती हूँ अबाउट दीज लेजेंडरी आर्टिस्ट, तब समझ में आता है दैट लकी अली जैसे आर्टिस्ट ने पॉप म्यूजिक के लिए कितना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। उन्होंने इतने बड़े हिंदी फिल्मों के लिए गाने किए हैं जैसे एक पल का जीना, अनजाना अनजानी में उनका गाना था, पर जितने लोगों से बात करो उनका नाम सुनते ही सब उन्हें एक पॉप स्टार बोलते हैं। उनके अपने पॉप सॉन्ग्स, वो खुली सड़क, वो गिटार, वो लाल गाड़ी, धूप में लकी अली गाने गा रहे हैं, और ये किसी फिल्म के गाने नहीं है, ये उनकी अपनी एल्बम के गाने हैं। दैट्स जस्ट द मैजिक दैट दिस मैन हैज। आप कभी इनका लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करें, क्राउड कमाल की होती है, आपको 70 साल के लोग भी मिलेंगे और 20 साल के लोग भी। इंटरनेट पर जो उनकी क्लिप्स हैं, उनके गानों के वीडियोस हैं, उनके कमेंट्स के नीचे हर उम्र के लोग मिलेंगे और एक ही जैसी बातें करेंगे। वन ऑफ दोस रेयर आर्टिस्ट जो सारी जनरेशंस के फासले मिटा रहे हैं। और जो ये वाला गाना है तेरे मेरे साथ, अक्स एल्बम का गाना है, इसका वीडियो क्यूबा में शूट हुआ था। धूप, खुली सड़क, एकदम फ्री फीलिंग। गाना सुन के आप बहुत हल्का हल्का फील करोगे और सनी फील करोगे। इट्स वेरी सनशाइन वाला सॉन्ग, टॉक्स अबाउट कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, कि जब सारा जग सोता है। ये गाना उस अजीब से खास से कनेक्शन की बात करता है जो वर्ड्स में बोलना मुश्किल है, तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लो। लकी अली की आवाज में दिस इज तेरे मेरे साथ प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन कैसेट क्लासिक। पत्नी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: अगर सनशाइन इमोजी एक गाना होता ना तो लकी अली का दिस सॉन्ग वुड बी इट बिकॉज वाओ हाउ डू यू डू दिस लकी अली की आवाज में. दिस वॉज तेरे मेरे साथ ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर जल्दी आओ. 90s 2000s का वो जो भी गाना है जिसको सुन के आज भी आप बड़े खुश हो जाते हो ना कि यार इस गाने में ही बात थी, वही वाला गाना जानना है मुझे, एट आरजे कनिका पर आके हमारे साथ शेयर करो. मैं और अश्काय हम दोनों आपकी सारी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ बढ़ते हैं. आदित्य रिखारी रावत और कुटले खां का गाना, गाने का नाम ए अजनबी. 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
3: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री थी, हमने अपने 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने को शाउट आउट दिया। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। ज़ारा खान का गाना मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद हर्ष नुसी का साड़ी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। नूर खान एंड मधुर एक्सो के आरजू ने इस हफ्ते डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 8। देन संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 7। एश किंग का किनिया सोनी 4 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी 8 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ का डीलर इज द मोस्ट सीनियर सिटीजन सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन 19 हफ्तों से बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। 15 हफ्तों से डटा हुआ ये गाना आदित्य रिखारी रेवटों कुटलेखा का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, कोई रीशफल नहीं हुआ है, ये दोनों गाने इन पोजीशंस पर डटे हुए हैं 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। 18 हफ्तों से ये गाना भी डटा हुआ है, शीशा दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड के लिए इज अ न्यू स्टार्ट, एक नई कहानी, लेकिन हर कहानी नई याद बन के नहीं रहती, और शायद इसलिए आज हम एक अजीब ईरा में जी रहे हैं। फिल्में भी वापस आ रही हैं, कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, सॉन्ग्स भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पता है यादें बनाना उन्हें दोबारा बेचने से कई ज्यादा मुश्किल होता है। ऑगस्ट शायद इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है। यू गॉट टॉक्सिक, यू गॉट आवारापन, यू गॉट बंटवारा 1947, तो क्या 2026 सिर्फ हिट्स देगा या फिर हमें कुछ ऐसी फिल्में और गाने भी देगा जिनके बारे में हम 10 साल बाद भी बात करेंगे। इसी होप के साथ वेलकम टू द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, एंड आई एम सुरेन सुंदरम।
0: नंबर 20।

a banger by Jasmine Sandlers on number 20 from Dhurandhar. और number 19 पर डेब्यू कर रहा है आंखों से तूने ये क्या कह दिया, एक ऐसे गाने का रीमेक इसके ओरिजिनल वर्जन को किसी मेकओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और मजेदार बात यह है कि ये जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसके अंदर हीरो राघव जुयाल डायरेक्टर से खुद पूछते हैं क्लासिक गाना रीमेक क्यों कर रहे हो, और जवाब मिलता है रिकॉल वैल्यू। बस अफसोस इतना सा है रिकॉल तो सिर्फ ओरिजिनल का रह जाएगा, नया वर्जन सिर्फ उसकी डीजे मिक्स कॉपी बन के रह जाएगी। फिर भी काउंटडाउन पर उसकी जगह बन रही है दिस इज आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है स्टारिंग राघव जुयाल। इस हफ्ते गाना नंबर 19।

0: Girls Club. If you wanna play, fall in line, little boy. Cause you can't run away. There's nowhere to hide. There's nowhere to go. I've shattered the ceiling. There's blood on the floor. A fight to the finish. Or a kiss goodbye. Get your last wish, baby. Cause you're gonna die.
1: Have you noticed? जब जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलना कम कर देते हैं, गाने चला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी आवाजें सुनी, बहुत सारे नारे सुने, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हर जगह वही तीन गाने सबको सुनाई दे रहे थे, एक जो इस देश की पहचान बन गया है,

दूसरा जो हर मुश्किल घड़ी में इस देश को मोटिवेट करता है। और फिर ये तीसरा और आखिरी गाना जो अपने अंदर की आवाज को झंझोड़ता है। सोचिए, ये तीनों गाने आज के नहीं है, 2 दशक से ज्यादा पुराने हैं। फिर भी जब इस जेनरेशन को अपनी फीलिंग्स को आवाज देनी थी, इन्होंने कोई नया गाना नहीं ढूंढा, वापस इन्हीं गानों तक लौटाए। एक बार जो गाना आवाज बन गया, उस आवाज को दबाना मुश्किल होता है। हर जेनरेशन उन्हीं गानों को अपना लेती है जो उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझ ले। इस हफ्ते मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक एआर रहमान की वो कॉम्पोजिशन जिसने हर बार एक नई जेनरेशन के साथ फिर से जन्म लिया, फिर से उस पीढ़ी की आवाज बनी। टॉप 20 रीवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 17.

ईरा में एक ऐसी आवाज होती है जिसके साथ हर नया सिंगर कंपेयर होना शुरू हो जाता है। कभी रफी साहब थे, कभी किशोर कुमार, फिर उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, और अब पिछले डेढ़ दशक से इट इज अरिजीत सिंह। इसलिए जब कॉकटेल 2 के प्रमोशन शुरू हुए और तुझको को स्टेज पर गाने की बारी आई तो अरिजीत तो वहां नहीं थे, लेकिन एक आवाज और थी, एक अलग आवाज, एक सिंगर जो अभी भी अपना सपना जी रहा है। नाम है सोनू इश्तियाक खान, और तुझको को गाने का रंग इनका बिल्कुल अलग था।

खूबसूरत। देखिए ये अरिजीत बनने की कोशिश नहीं है, ये एक सिंगर का अपना मौका ढूंढने की कोशिश है। शायद हर बड़े आर्टिस्ट की लेगेसी भी कुछ ऐसी ही होती है, वो सिर्फ अपने गाने नहीं छोड़ता, अपने बाद आने वालों के लिए एक स्टैंडर्ड छोड़ जाता है। कौन जाने आज जिस सिंगर को हम स्टेज पर अरिजीत के गाने गाते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कल उसके गाने कोई और गा रहा होगा। फिलहाल नंबर 16 पर द हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल जाइए सजना बाय जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धू रंधर। नंबर 16।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 40.

एक वार्निंग है, इस गाने को अंडर एस्टिमेट मत करना। पहली बार सुनोगे तो अच्छा लगेगा, दूसरी बार सुनोगे तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और तीसरी बार बस फिर ये गाना दिमाग से निकलेगा ही नहीं। और शायद इसलिए इसका नाम भी मदहोश है। टॉक्सिक का ब्रांड न्यू ट्रैक दैट डेब्यूज ऑन द चार्ट्स ऑन नंबर 14। लेकिन इस गाने ने मुझे एक और चीज रियलाइज करवाई। पिछले साल जब पूरा देश ये वाला गाना गा रहा था,

0: हम फहीम अब्दुल्ला की बात कर रहे थे, हम तनिष्क बागची की बात कर रहे थे, लेकिन एक नाम शोर के बीच कहीं दब गया, अरसलान निजामी। पर अगर आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन से वाकिफ हैं तो मदहोश सुनते ही आप समझ जाओगे ये उसी दुनिया का एक्सटेंशन लगता है, वही फील, वही एटमोस्फियर, वही म्यूजिकल डीएनए। और एक बात ने तो सच में दिल जीत लिया यार, फहीम अगर चाहता तो ये गाना खुद गा सकता था, लेकिन उसने सिद्धार्थ बसरूर को ये गाना दे दिया। एक आर्टिस्ट सच में तब और बड़ा बन जाता है जब उसे सिर्फ अपनी आवाज नहीं अपनी कॉम्पोजिशन की भी फिक्र होती है। और यकीन मानिए ये सिर्फ डेब्यू नहीं है, मुझे लगता है मदहोश तो बस अभी शुरू हुआ है। लेकिन जो अगला गाना है वो उस फ्रेंचाइज से है जिसका इंतजार 19 सालों से हो रहा था, उस दुनिया में सब जाना चाहते थे, आवारापन की दुनिया। लेकिन पहला गाना उस गहराई तक नहीं ले जा पाया जिसकी शायद सबने उम्मीद की थी। द सॉन्ग दैट साउंड्स ईरली सिमिलर टू सैयारा, दिस इज वे जुनून बाय सुबोध शर्मा, म्यूजिक मिथुन का और लिरिक्स सईद कादरी भाई के। इस हफ्ते टू स्पॉट्स डाउन और नंबर 13।
1: नंबर 13।

0: ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: एक लिरिसिस्ट जब खाली कागज के सामने बैठता होगा या होगी तो उनके दिमाग में सबसे पहले गुलजार साहब वाले लफ्ज आते होंगे या शायद जावेद साहब वाली शायरी आती होगी। लेकिन फिर डायरेक्टर बोलता होगा, यार मुझे गाना चाहिए जिसका नाम हो इश्क कमीना, या शायद गाने का नाम होना चाहिए चटनी, और वहीं से असली क्रिएटिविटी शुरू होती होगी। क्योंकि मुश्किल खूबसूरत लफ्ज लिखना नहीं होता, मुश्किल होता है ऐसे लफ्ज को हिट बना देना जिसे किसी ने गाने में इमेजिन ही ना किया हो। सच बताइए, आपने कभी अपने प्यार का इजहार इस तरह किया है?
1: तेरे

यार मैंने किसी लड़की को कभी नहीं बोला कि उसको देख के मेरा दिल डिंग डोंग करने लगा है। इनफैक्ट मैंने तो कभी किसी लड़की से ये बोलने की भी हिम्मत नहीं की।

देखिए ना, आज ये वर्ड सुनते ही डिक्शनरी या किचन याद नहीं आता, सीधा गाना याद आता है। शायद यही लिरिसिस्ट की असली जीत होती है। वो सिर्फ गाना नहीं लिखते, वो एक लव्स की आइडेंटिटी ही बदल देते हैं। और अगर ऐसी हिम्मत की बात हो रही है तो फिर एक गाना डेफिनेटली बनता है जिसके टाइटल को सुनकर लोग पहली बारी में शॉक हो गए थे, लेकिन जब गाना सुना तो गाना कल्ट बन गया। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट ट्रैक भाग डीके बोस भाग डेली बेली से अमिताभ भट्टाचार्य जी को मेरा शत शत प्रणाम। स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।